नहीं तो ये क्रम आने और जाने का चलता रहेगा। सत्संग से परमात्मा की ओर को बढ़ने की एक तड़प तैयार होती है, भूख तैयार होती है। ये भी पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। ये संसार और शरीर दोनों नश्वर है, आत्मा और परमात्मा दोनों अजर और अमर हैं।

नहीं तो ये क्रम आने और जाने का चलता रहेगा। सत्संग से परमात्मा की ओर को बढ़ने की एक तड़प तैयार होती है, भूख तैयार होती है। ये भी पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। ये संसार और शरीर दोनों नश्वर है, आत्मा और परमात्मा दोनों अजर और अमर हैं।